और जंग लड़न दे बराबर ना खलो सके। तीजा कारण यह बनिया गुरु के सिखा ने पहला जाके टिकाने पता कर रहे सन भी कितने सानू किवें हल्ला करना चाहिए। इन्हां तीन कारण ने उत्थे कसूर दे इतने 12 किले होने के बावजूद भी कसूर विच पठाणा की गिनती बहुती होने के बावजूद भी सब कुछ प्रबंध होने के बावजूद भी उत्थे जिद हासिल गुरु के सिखा के हवाले हुई और गुरु के बचन का भी भरोसा सी ना हुक्मनामा जो लेके गए सन। अगे गल तो ना उस तो बाद विच फिर वक्त आया 1763 के सारे वक्त ने उन्हां ही दिनों दे विच एक अचानक पड़ा होर वरत्या एक इत्थे गुरु के सिखा ने फिर दुबारे एक बारी सरहद ते हमला किया। मैं निका जिहा विचों जिक्र करके अगे तुरना चाहना है ते उदों याद रखियो जे उदों गुरु के सिखा ने हमला करके सरहद नूं अपने काबू विच ते कर लिया। इत्थे जिहड़ी इह इलाका जिहड़ा मिसल दे हिस्से विच आया ओह बुढ़ा सिंह जथेदार बुढ़ा सिंह उहदे हिस्से विच आया ते बुढ़ा सिंह ने अगे कुछ दिन उत्थे रहा या कुछ महीने ते नहीं कह सकदे आपां ते उह कुछ दिन उत्थे रहा। उहने खालसे कोल आके हाजिर होके एक बेनती कीती कहण लगे खालसा जी असीं सरहद विच नहीं जी रहना मैं इहनूं सरहद नूं सांभणा। उहनां आख्या क्यों कहण लगे जिथे भी असीं कदम रखने आ ना जिहड़ी भी असीं इट वेखने आ ना जिधर भी असीं झात मारने आ ना ते सानू साहिबजादियां दी शहादत चेते आउंदी है उत्थे सवाए रोण तो बिना उत्थे सवाए साडे दिल नू धूल पैण तो बिना सानू सरहद विच कुछ नहीं लभदा। सानू ते जी करदा किन्ना चंगा होवे असीं सरहद नू बसी नहीं वेखना चाहुंदे असीं ते सरहद नू उजड़ी वेखना चाहुंदे आ मैं नहीं जे सरहद विच रहना। खालसे ने हामी भरी ए महाराजा आला सिंह नू पिछे जिक्र आ चुकिया होया महाराजा आला सिंह कौन है महाराज आला सिंह 25,000 रुपए दे विच समुची सरहद दा इलाका बेच दिता भी तू सांभ। महाराजा आला सिंह जिहड़ा ओ डबल माइंडेड जिहा सी ओह ना बहुता सिख सी ना बहुता जालमां नाल सी। अगे गल तोरा वक्त 1764 दा आ गया इत्थे इक बड़ा अहम पाणा वरतना है। 1764 दे विच चरत सिंह ने ते होर गुरु के सिखां फौजा ने लाडलियां ने जाके रोहतास दे किले दे उत्ते जाके हमला कर दिता। इत्थे एक नां है थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुणोगे सरफराज खान इत्थों दा हाकम सी ते उस सरफराज खान नूं गुरु के सिखां ने मार मुकाया ते ओ वैसे अगे जाके मरिया। मैं इतिहास छोटा करना चाहना है ओनू पकड़ लिया सी ते ओ कहण लग्या भी तुसी किसे तरह मैनू माफी दे सकदे हो। उन्हें आख्या भी तू खाली हत्थे इत्थों निकल जा खाली हत्थे इत्थों निकल जा। निकल गया अगे बुरी मौत मर गया गल वखरी है मारिया गया पर इस गल विच हुण इह गल दा पता लगदा कश्मीर विच बैठे सरबुलंद नूं सरबुलंद खां कश्मीर दे विच बैठा है। 1764 दा जिक्र चल रहा हूं तुहाडे नाल ओनू पता लग्या भी गुरु के सिखां ने सरहद भी अपने अधीन कर ली गुरु के सिखां ने मुरंडे नूं भी अपने अधीन कर लिया मलेरकोटले नूं भी अपने अधीन कर लिया कसूर दे इलाके विचों जालमां नूं कढ उस्मान खान नूं मार भगाया इत्याद कोठे अपनियां मन मर्जियां करन दी बजाए इह सिख जिन्हां नूं मैं उजाड़ के रखिया होया सी ओह एडा वड्डा सिर चुक बैठे ने। जदों इस गल दा उन्हां नूं पता लग्या सारी गल दा ते इधरले पासे कश्मीर दा हाकम सरबुलंद ओ 12,000 दी फौज लेके इस रोहतास दे इलाके वल तुर पिया। रस्ते विच अटक दे किनारे इन्हां दी आपस विच टक्कर हो गई चरत सिंह दी ते नाल इस पापी सरबुलंद दी। जदों इह टक्कर होई उदो इन्हां ने इन्ना कु हट के जंग लड़िया वह जिहड़ा सरबुलंद सी वह कैदी बना लिया जिहड़ियां फौजां सन वह भज गईआं। हुण जदों

गुरु सवारियों जी असीसा बख्शो प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दिया विचारां दास तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा कर 1800 तक आप विचार कर सकी। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल समझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वो बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगला की शानी भरते सन या वक्त के हाकमां की खुशामद करते सन, उहीओ लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उन्हां दे खून विच सी, उन्हां ने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दित्ती। ऐसा भाणा वरतिया इह सरदार जिहड़े कल किसे कोलों नहीं सन हारदे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। जिहड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे उह जबान दे मिठियां कोल हारन लग पए। खुशामद है ही इहो जिही जिहड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी होमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह दे इहो जिहे लोगां ने दूजी गल भरा मारू जंग उह मैं तुहाडे नाल पिछले दिनां च सांझी कर बैठा होया हां। एक दूजे तो एक दूजे दियां मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाना यह उन्होंने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जब इस तरह के हालात बन गए तो इन्हां विचों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन उन्हां विचों कुछ चढ़ाई भी कर गए, अगलियां मिसलां दे जिहड़े होर सन

0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी भी सजी होई। गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ, प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज, चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब। अचानक तुरकां ने हमला किया, सहिदा बेग शरनी पिया, श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया, अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसी डर तो बिना किसी खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकता, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकता है, रवि जी कहंदे ने किसी ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया।

0: सत्य पातशाह जी ने जो देखिया कि सारे जने आ गए ने, दोनों नू पास बिठाया, पठान नू भी, ब्राह्मणी नू भी, अते बाबा अजीत सिंह नू हुक्म होया विश्राम कर लो। वो महाराज का हुक्म पा के विश्राम करन चले गए।
1: दिज की दारा दिज को दे, आशिक बाद कयो सुखमय।
0: ब्राह्मण दी ब्राह्मणी उन्हू वापस मोड़ दिती। आला भाई अपनी स्त्री, वो बड़े गुण गाउंदा होया, मुख दे विच्चों बड़ियां असीसां दिंदा होया,

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नामिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे खजाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव के सगै है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेडे घोड़े दे गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभु थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उत्ते असवा

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जाता है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वो भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आके उतरे महिलां दे सामने, माता जी

0: महाराज ने कहते एक कहे जे सिंह तुम खड़े किए उ दरवाजे से मूहरले पासे पहरे से वो सारा दान ए खो लिया है इन्नी काहदी इच्छा जाग पई उन्होंने
1: आवन जानो बंद करन ते तिज आदक सर संग
0: तो इस कृपा कहते आना जाना ना सारे ना बंद करता आप ब्राह्मण ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे कदे ओ ना लड़ पे ये कोई चंगी गल है या महाराज सच्चे पातशाह नु सुना रहे हन
1: कहे सुने मैं किसके नाई उचित अनुचित लख न सकाई
0: अरे थोड़े सिंह बारे ही हुंदे जांदे ने ये तो किसी के कहे सुने च नहीं है ये तो ना योग अयोग जानते ने इस प्रकार के नाल हुण सिंह तो महाराज के सूल ते चलणगे जो सिंघां नूं हुक्म आ सी तां उह कम करना हुण माता जी कहिंदे मेरे अखे नहीं लगदे वो जिवें पिछे जे माता जी ने एक बारी अपनी मर्जी नाल ही कहता आखे लंगर एक टाइम कर दिओ मसंदा ने जाके डराता माता जी काल पै गया चारे पासे बई हुण तां बड़े लोग आ गए हुण तां अपना अन्न मुक जावेगा आपां वी भुखे मर जावांगे माता जी ने सतगुरु जी नूं कहण दी बजाए सीधा ही हुक्म करता भी लंगर एक टाइम कर दिओ जदों महाराज कोले खबर गई तां महाराज ने माता नूं पुछया माता जी ठीक असीं थोड़े साहिबजादे आ पुत्र हैं पालिया ठीक है पर गुरता गद्दी दे मालक हां हुक्म संगत उत्ते थोड़ा नहीं चल सकता तुसीं किहनूं पुछ के लंगर इउं कीता ये तो एक वो गल होगी कि बेसिदकियां वाली गल होगी महाराज ने कहा कि रोज तो तुसीं पढ़दे हो काहे रे मन चितवै उद्दम जाहर हर जीव परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ता कर जगाग्या कर धरिया माता जी तुहाडा अपना स्थान है सत्कारयोग है पर तुसीं अपनी मर्जी नाल कोई बचन ना करिया करो फिर काफी महाराज ने वीर रस विच आके बचन भी करते मसां बख्शाए सी सो इस करके हुण भी माता जी नाराज ने कहिंदे इह तुहाडे जिहड़े सिंघ ने ये अपनी ही मनमर्जियां करते हैं
1: श्री सतगुर ऊचे बोल मात के सुने श्री सतगुर श्री मुक्त भने
0: जदों माता जी के उची उची बोल सुने तो उस वक्त सुभायमान मुख विचों गुरां ने इस तरह वचन कहा
1: मात कोप के सन अस कीना हुक्म तुमारो को ने चीना
0: सो उस वक्त माता जी काहदा गुस्सा कीता है तुहाडे हुक्म नूं जाणिया नहीं है किसने नहीं जाणिया किने तुहाडा हुक्म मन्निया दसो मैनू
1: सुन सुत ते प्रसंग कह दियो तौ सिर सदका बिपरन लयो
0: सुन के अपने साहिबजादे भाव दसवें पातशाह तो माता जी ने सारी गल सुनाई तुहाडे सिर सदका मैं ब्राह्मण नूं दान दिता सी मैं सारियां चीजां ब्राह्मण नूं दित्तियां सन
1: ले जा सो सिंगन छीने हुए निसंग अस उदम किन्ने
0: देखो किन्ना उपद्रव कीता उन्होंने निसंग होके आ सारियां चीजां उन्होंने खो लियां कि ब्राह्मण दे पासों
1: श्री सतगुर
2: चौपाई भीम चंद सैलिंदर बिलंदा पनियो सुनो तुम सकल गिरंदा क्यों न भविखत बात विचारो सिर पर शत्रु प्रबल विचारो
3: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार सत्कार सहित ਅਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਜੇ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा मिलके बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने आओ सतकार नाल इतिहास श्रवण करिए रसना करिए पवित्र गज के आखो सा

0: सच्चे पातशाह यह महाराज ये तुहाडा ही पंथ है हुण पंथ की कटिया हो रही है भाव कट वड हो रही है पंथ हुण हार रहा है पहला नहीं सी दिखिया महाराज कहते जद असी बचन किया उदों तुहानू याद नहीं आए असी यह छत्र छाया ही ठीक रहिंदी गुरु साहब की जे छत्र छाया छड़ दिए फिर लोग चारे पासों पै जांदे हन
1: क्यों ना संभारत हट पिछवाई कौन खता इनके घर पाए
0: महाराज केड़ी गलती होगी सातों क्यों नहीं तुसी पिछे हटदे क्यों नहीं साडी मदद करदे
1: जेकर सिंह है अवगनियारे तौ आपके जगत उचारे
0: जे सिंह अवगनियारे ने ता भी जग ने तो होर कुछ नहीं कहना जग तो फिर भी यही कहेगा कि कलगिया वाले दे सारे सिंह ने
1: इत्यादक बोलत समदाए मिले आन को हैन तवाए
0: तो इत्यादक सारे बोलते ने तो घोड़िया भजाते ने कि महाराज नू मिलिए
1: करत पुकार सो आए कनेरी इत हेरन गुर ग्रीव न फेरे
0: भजाते ने घोड़े आपो अपने मगर मगर महाराज तेज घोड़ा भजा रहे ने पर सतगुरु जी ने पिछे नू अपना मुख कीता ही नहीं है कहंदे मैं नहीं रुकना हुण
1: कहे बहुत प्रभ छिन पर थिरो लड़त पंथ अवलोकन करो
0: बड़ा कहा महाराज एक छिन लई टिक जाओ सिंघां नू देख लो सिंह किवें जंग कर रहे ने घिर गए हन
1: कह जब रहे खरे मैं होए नौरंग सिंह मिलियो प्रभ जोए
0: जदों बहुत कहा महाराज रुके ना एक भाई नौरंग सिंह सीगा उन्हें उस वक्त महाराज नू देखिया ते घोड़ा भजाया
1: तुरत तुरंग उतरियो अगवाए ऐच लकीर दई सह साए
0: भाई नौरंग सिंह ने महाराज जी तो किन्ना ही अगे घोड़ा कढ के छेती नाल उतर के लकीर खिंच दी।

0: महाराज ने भजन किया कि खालसा गुरु रूप है ते गुरु खालसा है, युद्ध विच टिक के लड़ो, हुण जाओ फिर जे साड़ी आस तकी है फिर पिछे ना दौड़ो, टिक के जंग करो।
1: हतो रिपन दल को दल पकड़ो शस्त्र न क्रोध,
0: क्रोध हुंदा क्रोध दे नाल वीर रस दे जा के शस्त्र पकड़ो अते दुश्मनां दे दल नूं मारना करो।
1: चौपाई सुन सतगुर के वरसां बैन,
0: सुन के सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जिहड़े वार वरगे बचन सन वरसम, यह वर हो गया खालसे नूं, भावें गलती हो गई एक पर एक इन्ना वड्डा वर देना कि खालस गुरु गुर खालसा भाव के खालसा गुरु है ते गुरु खालसा है, एदी सिंघां नूं बड़ी खुशी होए।
1: हट्यो खालसा रिस कर नैन,
0: खालसे ने फिर जदों देखिया कि हुण वचन हो गया गुरां दा कि बहुत वीर रस विच आओ अते जंग करो, वापस मुड़े पहाड़ियां वल नूं, बहुत वीर रस अखां विच लालियां, शस्त्र पकड़ के फिर टुट के पै गए।
1: धर ज्वाला बमणी अर दमणी,
0: ज्वाला बमणी जिहड़ी बंदूक हुंदी है पावे दा नाम ज्वाला बमणी, दुश्मन नूं मारन वाली।
1: चोरी गुलका गण रिपो समणी,
0: रिपो तो भाव दुश्मन नूं शमन करन वाली, नाश करन वालियां गोलियां फिर खालसे ने चलाईयां।
1: श्री गुर थिर हवै तनुख संभारे,
0: महाराज जी ने जदों देखिया कि हुण खालसे ने अपनी भुल बख्शा ली, अपनी गलती का एहसास किया है, उस वक्त गुरां ने अपना तनख बाण संभाल लिया।
1: सपत बाण ऐचन कर मारे,
0: महाराज ने सत तीर आसमान वल नूं चला दिते।
1: परी गगन में गर्व गुंजार,
0: आकाश दे विच बहुत भारी गुंजार होए जिवें बदल गरजदा बड़ा भारी।
1: बेसमाने रिप सुन तुंकार,
0: जदों इस तरह आकाश विचों आवाज आई गरजने दी दुश्मन बड़ा हैरान होया सुन के।
1: एक ही बार हटे सब सिंह,
0: एको ही वार सारे सिंह हटे भाव पिछे नूं, दुबारा जिहड़े इधर नूं मुड़े आ रहे सन पिछे नूं वापस पहाड़ियां वल नूं
1: मिल गए। ज्यों भूखा सिंह,
0: जिवें मिर्ग नूं देख के भूखा शेर पैंदा है टुट के, इस तरह खालसा वध्या है।
1: अगर जो मारत आवत ताए,
0: अगे जिहड़े मारदे आउंदे सी धा के दौड़ के,
1: कितक हते को मार हटाए,
0: किन्ने क तां सिंघां ने पहाड़िए मार दिते अते किन्ने क मार के भजा दिते।
1: तोमर सेले सांग परहारे,
0: ये सारियां इको ही किस्मां बरछे दियां ने, तोमर ते शेला ते सांग, सोटी दा फर्क है, उहदी डांग दी लंबाई दा फर्क है, इसे प्रकार उन्हां दे अगे दे फल दा फर्क है, देखण नूं इको ही चीज लगती है। सो इस तरीके नाल लंबे बरछे छोटियां बरछियां तो लंबे फल वालियां बरछियां मार मार के भजा दिते।
1: सिपर अगर कर किस खग मारे,
0: कईयां ने अपनी तलवार दे नाल मारे, ढाल दे नाल अपनी बचाओ कीते।
1: गुर बचते शहीद गन दौरे,
0: जदों महाराज जी ने सत तीर आसमान वल चलाए तां शहीद सिंह जिहड़े हुंदे ने आकाशी फौजां जिन्हां नूं कहिंदे ने ओह सारे दसवें पातशाह दे हुक्म विच चलदे ने, करोड़ां दी गिणती च ने जो सृष्टि नूं चलाउण वाले ने। सो महाराज दा हुक्म पा के बहुत सारियां आकाश विचों फौजां उतरियां।
1: परे हेल कर फेरे पबारे,
0: जदों उन्हां दा हल्ला होया दुश्मन इउं हो गए जिवें बौले हो जांदे ने, इन्ना जबरदस्त हमला हो गया।
1: मची मार दीर्घ इक बारे,
0: बहुत दीर्घ मार मची, बड़ी तगड़ी मार मचाई शहीदां सिंघां ने आके।
1: مر مر پرتے پائے پسارے
0: مر مر کے لمے پی گئے پائے اپنے پیر پسار کے اسی وقت ہی انہوں کا تو بار نہیں چل سکتے وہ جی ایک برچا مارن سو سو بندہ کٹھا ہی ڈگتا ہے
1: جنم لنگ بھگے کو کھائے
0: مانو

वाले केसाधारी सिख ने तिने सिखियां पूर्ण कीतियां ने। बेहंड हुंदा बिना हंडन तो भाव पूर्ण। इसलिए सिंह केसाधारी होवे ते तिने छाया का त्याग करे तो बिहंड तिना गल्लां का त्याग करे। ये तीन चीजा आपां पहलां भी देखियां कि मड़ियां मठां नूं ना मन्ने, भेख ना धारण करे, अते इसे प्रकार जो है ना आम तौर ते लोग दान जिहड़ा है खाण दे विच विश्वास करदे ने, एवें इधर उधर रोटी खा लैनी, जै तैं का जिवें प्रसाद, मेरा सिख नहीं आज जुगाद। महाराज कहिंदे इस तरह जिन्हें अमृत छक लिया वो सहज धारी विचों निकल के चरण पहुलिए तो भी उत्ते हो के अमृत धारी सिख बनिया है। पर हां जिहड़े सानू मनदे ने सारे गुरसिख हौली हौली, सहजधारी का मतलब यह नहीं हुंदा कि सारी जिंदगी ही सहजधारी बनिया रहे, फिर उहदा की फायदा। तरक्की करे सहजधारी तो अगे अमृतधारी भी बने, ना कि सहजधारी ही बनिया रहे। महाराज कहिंदे फिर उहदा कल्याण किवें होवेगा। इस करके भाई हौली हौली तरक्की।

0: ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै लई, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकते हैं इस ढंग दे नाल कि ये सिख है।
1: मेरो सिख आन सब त्याग, पीठी ब्राह्मण दान न लागे।
0: और जेडे मेरे गुरसिखो ऐसा त्याग कर दियो, जेडे हुण आपां नूं मानदे ही नहीं, गुरु घर नूं नहीं मानदे ऐवें, उन्हां ब्राह्मणां नूं दान देना हुण ओह नहीं करना ऐसा, क्योंकि कलयुग दे अंदर ब्राह्मण संपूर्ण रिहाई नहीं है, वह सारे पुठा सीधा खांदे कुकर्म करदे ने। इस करके महाराज ने कहा है जिहड़ा गुरु घर दा है, श्रद्धालु है, प्रेमी है, किरत होर नहीं करते, कई ब्राह्मण गुरु घर के प्रेमी बन गए, गुरु की बाणी पढ़ने वाले बन गए, चरण पावलिए बन गए। सतगुरु कहिंदे चलो उन्हां दा तां दान इक वखरा है, वह तो एक गुरसिख है, भाव कहण दा सीधा ही कि गुरसिख जिहड़ा भी बन जाए, खंडे बाटे दा अमर छक लवे, गुर भाई है साडा, उहदे नाल तां वरत वलेवा साडा होना चाहिए। पर हुण जे तुसीं कहो जी असीं सारयां नाल ही वरतना, महाराज कहिंदे हुण नहीं, हुण असीं रोक ला दित्ती है कि होर ना किसे नाल ऐसे नाल नहीं वरतना जो गुरु ग्रंथ

0: सुपते निसमें सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नौ सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना कहड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जांदे तां वी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तां है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप विच सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडतां नाल कर रहे ने। जिवें आम तौर ते सतगुरु सभा लगा के बैठदे सी इहदे विच कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी दे वचन आउणगे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां दी जनरल नॉलेज देखदे ने किन्नी का है किन्ना कि इन्हां नूं ज्ञान है। कई प्रश्न करनगे चाहे वह प्रश्न साडे नाल संबंध रखते ने जां नहीं रखते। कवियां दे ज्ञान नूं परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्हां दे जिहड़े उत्तर ने उन्हां नूं सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे। नहीं असल विच इह गल इस तरह नहीं है इह गल इस तरह है। ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰੁੱਤਰ ਕਰਨਗੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ।

0: सब खत्म हो जाएंगे, एक बस नाम का ही महात्म होवेगा चारे पासे।
1: तोहे राज होए पुत्र जब सब देवन देव वरज।
0: ब्रह्मा जी कह रहे पुत्र जब तेरा राज होवेगा ना सारे देवत्या नू वरज देंगा, किसी देवते का कुछ कर्म नहीं चलेगा, कोई नहीं आवेगा धरती ते, सिर्फ तेरा ही राज होवेगा।
1: जो इच्छा त्यो वर्तीए नाम महात्म गर्ज।
0: तो जिमें इच्छा होवे उवें करी गर्ज, कहिंदे नाम महात्म गर्ज, लोकां नूं गर्ज गर्ज के बदल मंगू सुनाई। ओ लोको कलयुग दे विच अब कलू आयो रे, एक नाम बोहो बोहो अनरुत नाही नाही, मत भरम भूलो भूलो। ओ कलयुग दे लोको सुन लो, होर कोई कम ना करियो, कोई कम नहीं फलना, किसी देवी देवता की पूजा ना करियो, मड़ी मसाणी ना पूजियो, कलयुग विच सिर्फ वाहेगुरु मंत्र दा राज है, वाहेगुरु कहो।
1: भला तुम्हारा राज होए सकल सिद्ध होए वाच।
0: तेरा भला राज होवेगा और सारे कहे हुए जिहड़े बचन ने ये सिद्ध हो जाएंगे।
1: थोड़ी करनी फल अधिक तीन राखियो साच।
0: कलयुग दे विच थोड़ी करनी करनगे लोक, ते थोड़ी करनी दा फल ज्यादा होया करेगा। इस तरह तिना युगां दे विच अपने समय च जान रखी कि नाम दी थोड़ी करनी दा फल बहुता। पहलियां युगां विच लोक लखां बरस तप कर कर मर जांदे सी पुठे लटक लटक के, उदों नहीं सी इन्ना फल मिलदा हुंदा लोकां नूं। पर कलयुग दे विच सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आप भी ये बचन लिखे ने, एक चित जे एक छिन त्यायो काल फास के बीच ना आयो।
1: पर अंशी पर नार तज नाम सिरा है सुवात।
0: इन्हां गल्लां दा ध्यान रखियो, तीन चीजां दा, पर अंश खाणी पराई इस्त्री वल जाना, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਸ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਨਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਿਆਗ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ

0: गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, खीर निध हुंदा खीर समुंदर। तुहाडा जिहड़ा जस है वह तो हुण खीर समुंदर तो भी अगे लंघ चुकिया है।
1: कीरत तिहारी तुम्हें कह के संदेश जो।
0: सो तुहाडी जिहड़ी कीरती है यह मैं किवें कर सकदा? तुहाडी कीरती तो बहुत असी किवें कह सकते हैं? तुहाडा तो जस पहले ही इन्ना वड्डा है, इन्नी दूर जा चुकिया है कि तुहाडा खीर समुंदरों भी पार जिहड़ी कीरती लंघ चुकी है। सो इस करके ये कवि तुहानू तुहाडा जस कहण लई तुहाडे पास आया है, संदेशा लैके मेरा, तो इहनू तुसी माण आदर बख्शना।
1: जो भई सुन प्रसन्न कलगी तर है के राखियों निट मान बो कह के।
0: भाई अमृत राय नू महाराज ने बड़ा सत्कार दिता, अपने कोल बड़ा माण आदर सरकार दे के पक्का ही रख लिया।
1: रोज दयो कर दरब खनेरा।
0: रोज इनू हुण बहुते पैसे ला दिते कि बहुत माया, इतनी माया रोज इनू मिलनी है, जां हर रोज इनू 50 रुपए मिलने हैं जां 100 रुपया, इउं रोजीना ला दिता है।
1: इन सुन सुन कर सुजस बडेरा।
0: इस तरह सुन सुन के गुरां दा बहुत भारी जस।
1: करण परब पाखा तिन केने छंद बंद सुंदर गत लेने।
0: ए करण परब एदी पाखा जिहड़ी है भाव देश भाषा विच बोली विच ए अमृत राय ने करण परब लिखिया सारा, महाराज जी ने कह के छंदाबंदी विच इहदे कोलों लिखवाया है।

0: चलन समय संग रहण में दान दीन ओलीन।
1: चलन वेले किते भी जाना होवे, संग्रहण तो भाव एकत्र करना होवे, शुभ गुण इकट्ठे करने होण, दान देना होवे अथवा कई

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के एक बार जेडे मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत जो

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिहदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हैं, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। ये बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत तो यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घरां च चलदा करदा कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों ये कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लैंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे? क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल पुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसवीं दी बाणी है। ताइयों महाराज ने दसवीं ग्रंथ दी बाणी जिन्हें भी जाप साहब दे पाठ हो जाण, चौबी साहब दे वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तां महाराज ने यह चौबी साहब दे पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करदे ने चौबी साहब ते, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि इहदी जरूरत पै जाणी है। जाप साहब की बाणी फिर इसे प्रकार आईयों सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की। जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौबी साहब, आनंद साहब का पाठ, सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा, खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे हां, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे हां। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

वचन है कलयुग में, कलयुग में एक नाम आधार आधार मैंने आधार जे तुसी आखो ना कलयुग दे विच कोई आधार हो तां 20 रुपये जां 50 100 करोड़ रुपया आसरा ना ना ना कोई भैन आसरा नहीं, कोई पुत आसरा नहीं, कोई भरा आसरा नहीं, कोई सज्जन रिश्तेदार दोस्त मित्र कोई आसरा नहीं। कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक समझ लो, कला बोलो नहीं गुरसिखो ते चरणा ते मैं मस्तक रख के बेनती करदा वचन अपनी सुरत दे कागज ते लिखो कि कलयुग विच एक नाम दा ही आसरा, कलयुग विच एक नाम दा आसरा। जपो ना वाहे

याद रखे करो आपका सिमरन गर्भ ना बस है पर आपका सिमरन दूध जामा गुरु तो झूठे पीने गुरु को झूठे ना कहो एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तान गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज की कहते वैशाखन वेरलो के डर मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आन के क्या रेजी नलज लाज तो है नहीं ये नलज वैशाखन जीव ते में शर्म नहीं होती आखिर की गलती होगी इधर गुरु दास सिख को कबरा के मत्थे टेकन ले हर ताज करत हर ताज करमन छटके पत कानून ते जाई होरना वल तुरिया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया कहते नाले तू कहना हमारा ठाकुर सब ते उच्चा कहता नहीं तू कहते सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हें कुल की लैन जाना है जे जीवना तेरा ठाकुरा ते मरिया कुल की लैन जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी का वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखा कि मैं जीवते को मुए को मरे को मरिया मिलता है जीवते को जीवदा मिलता है तुरदे को तुरदा मिलता है उड़दे को उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे वो तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागा कवीतर चक्कर के ना पे गुरुद्वारे आया कर गुरुद्वार गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु द्वारे हुए सोची गुरु द्वारे आया कर वे कहते किसी में कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई गुरबाणी के बच्चे लिखा है हर बिन कछु न लागनी बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं लगता एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिक्या बोलो आन तार कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णय ढीठा कर निर्णय करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहेगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट हो गए एक बार आपको सतनाम श्री वाहेगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ उहनूं रचना नूं खातम होके क्या ए रचना पहलो ए कहो हां ए रचना गल करो इहदे नाल ए तुम अनरस राज रही जिहड़ा रस तेनूं गुरु ने दस्या आखो सतनाम श्री वाहेगुरु कहिंदे हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस भोगो ए रसना तू ओ वाहेगुरु की गल छड के चुगलियां बड़ियां करदी क्यों नहीं करदे आखो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलियां करदे ना आपां करदे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे भी चुगल ते निंदक की मौत ते कराउंदी चुगल ते निंदा करन वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पाणी नहीं पिउंदा ओहदी किरिया नहीं कोई समझदा
ਸਭ ਗੰਦੋ ਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਰੂਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਥਾਉ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ

पिताजी तुम्हारी महिमा ठाकुर ठाकुर ठाकुर पूज भगवाना हर जस रे मन गायल जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है गयो मान लय मेरो संपत रत धन राज सिंह पद नेह लगायो काल फास जग गल करी सब भयो करायो जान बूझ के बावरे तहि काज जगारियो पाप करत सुखच्यो नहीं ने गर्भ नवारियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई जे विद गुर उपदेसे ध्यान दियो जे विद गुर उपदेसे आसो सुन रे भाई नानक कहत पुकार के नानक कहत पुकार के कहो प्रभ शरण आई कहो प्रभ शरण आई नानक कहत पुकार के नानक

आप उस सज्जन कदी आवाज मारियो आवाज जरूर मारियो आउंदा दे आउंदा दे आवाज जिन्हें मारी उन्हां दे घर आउंदा दे धन गुरु ग्रंथ साहब की गोद बैठा कह रहे थोड़ा चौकीदार आउंदा दे आवाज मारियो फिर एक बार रिपीट करावो आउंदा दे आवाज मारियो मारो अंदर आत्मा तो आवाज आप सज्जन हाँ देखा तर अपनड़े खड़ी तका तर अपनड़े खड़ी तका

0: हमारी बहुत बहुत।
1: एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। करो कृपा सारे आखो आद सच जोगाद है भी सच नानक जुड़ के आखो जी।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मेनू विछड़ी नूं मेल लो,

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। ए नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है, धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया। उस तरह वर्त रखदे आ, उस तरह श्राद्ध करवाउने आ, उस तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उस तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उस तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विचों उह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।